0: Institute Sino.
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो। इट्स 12 पीएम।

0: साइनो 89.8 MHz तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
1: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.